जीवा पूरन होई दास होए दास की कहाला सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नामा जिसके कर्म लिखिया तुर करते नानक जन के पूरन काम तनहसरी महला पंजवा जनकी कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिक न पावन मूले उड़ गए बेकार राव जय जय दिखूं तय तय स्वामी कोए न पहुंचन हारा जो जो करे अब गया जन के होए गया तत्सहारा कर्ण हार रखवाला हुआ जाका अंत न पारा भारा नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढ़े मारा धनासरी महला पांचवा कर नौवा पड़ताला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरन गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा गह में पूजा गह कूप ते काट लेवो राम काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दुख

जियो हूं तिसे भी दिन रात मैं कदे न बिसरे जियो कदे ना बिसारी अंदन संहारी जा नाम लई ता जीवा सरवणी सुनी तय मन तृप्ते गुरमुख अमृत पीवा अनदर करे ता सतगुर मेले अंदन विवेक बुद्ध विचरे अंदर साचा नेहु पूरे सतगुरे सत्संगत मिले बड़ भाग ता हर से आवे जियो अंदन रहे लिबलाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बेरागे हलत पलत सोभा जग अंतर राम नाम लिब लागे हरक सुख दुआ ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत मिले बड़ भाग ता हर से आवे जियो दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हूँ मैं रोया मेरी मेरी करत बिहावे जो प्रभ दे तिस जेते नाही अंत गया पछतावे बिनावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया तोया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोया जियो कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आंदन जपत रहे दिन राते सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली बड़े आए नानक नाम मन पावे कर कृपा लियो मलाए महल हर पावे जियो तनासरी शांत महला वाहिगुरु तनासरी महला पांचवां शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जे संग हर रावीए गावीए जियो अमृत हर का नाम साध संग रावीए जियो पज संग साधु एक राधो जन मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया सच सिखिया कटी जमकी फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आविये बिरमंत नानक तार कृपा सदा हर गुण गाविये नैतरिया तर एक नाम निरंजनो जियो तू दाता दतार सर्व दुख भंजनो जियो दुख हरत करता सुखे सुहामी सरुन साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया पूर रहा सब थाए गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै भंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहि निर्गुण नीचा नाथ प्रभ अगम पारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापण हारिया जी जंत सब बस तेरे सगल जी तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल विचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्स पार नाम मोली जियो नित जपे तेरे दास पुरख पतोली जियो संत रसन बूटा आप तूठा हर से सही मातया गुरचरण लागे महा भागे सदा अंदन जागया साध सदा सरत समृतिबे स्वामी सा सास गुण बोले बिनवंत नानक तूर साधु नाम प्रभु अमोले राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेर मरमन जाना सत संगत राम हृदय बसाई हराओ हनुमान सर गुरु समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत प्राणा कबला कब कबला पत कबला नहीं जाना कहे कबीर सो परमे नाए पगलग राम रहे सर नाए दिन ते पहर पहर ते करिया आप कटे तन चीजे काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहू कवन बिदक जय सो देने आवन लागा मात पिता पाई सुत बंता कहू कू है काका राम जब लग जोत काया मह भरते आपा पशु न सूजे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूजे कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के भरमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक के सरना जो जन पाओ भगत कुछ जाने ता कुछ चर्ज काओ ज्यों जल जल में बैसन निकसे त्यों ठुर मिलो जलाओ हर के लोगो मैं तो मत का पौरा जो तन कंसी तजे कबीर।

0: आपे मत मत तत कढाए जप नाम रतन महा राम सखी मिले सखी मिलो मिल गुण गवाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर हर भगत दड़ी मन पाए हर हर नाम महा राम आपे बड़ दाना बड़ साहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा हर हर दात करो प्रभावे गुरु नानक नाम महा राम जैत श्री महला चौथा मिल सत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख विसाहा हर हर कृपा तार मज सोदन मिल सत्संग महा राम हर गुण बाणी सरबणी सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप महा राम सब तीर्थ भरत जग पुने तलाहा हर हर नाम ना जपे जपाहा हर हर तोल तोल हत पारी गुरमत जप महा राम सब कर्म धर्म कर सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किरबिख मैल पाप तुबाहा दीन दयाल हो आजन उपर देव नानक नाम महा राम जैत श्री महला पांचवा कार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कब नहीं जग मीता जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीता राम मात पिता बिनता सुत बंधव इष्ट मीते अर पाई पूर्व जन्म के मिटे सुजोगे अंते को ना सहाय मुक्त ला मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हाँ हाँ करत बयानी अवधे ता मैं संतोख न पाया हस्त अस रथ अस पवन तेज तनी पुमन पुमन चतरंगा संग न चलियो इनमें कछुए उठ सदायो नांगा हर के संत प्रै प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइये नानकी यहाँ सुख अगे मुख उज्जल संग संतन के पाइये जैत श्री महला पांचवा कर तीजा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव संदेसरो कहियो प्रै कहियो बिसम पही मैं बहुबिद सुनते कहो सुहागन सहियो राम को कहतो सब बाहर बार को कहतो सब मैयो वर्ण दिसे चेना लिखिए सुहागन सा तब जइयो सर्व निवासी कट कट बासी लेप नहीं अल पहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बिसहियो जैत श्री महला पांचवा तीरो सुन तीरो प्रभ को राओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेसमार बेअंत बड दाता मने गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सो ईसो पावो आसा मनसा पूरो जब जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन बसया दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को जैत श्री महला पांचवा लड़ींदा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसे बसेरा रहा सुख राधन दुख राधन बिसरे न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर जारा बिनसे परम देरा थान तनांतर सबनी जाई जो दिसे सो तेरा सतसंग पावे जो नानक तिस बार न हुई है फेरा जैत श्री महला पांचवा कर चौथा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुरे अग है तजी से आनप चिंत बिसारे अंग छोड़ियो है त्याग है राव जो देखो वाहिगुरु
1: सुख पाए मरे हर चरनी चित लाग जैत श्री महला पंजवा

स्वामी को प्रभु नानक बंधन शोर जय श्री महल्ला पंचमा चातरिक चितवत भक्त में कृपा सिंध करुणा प्रभु तारो हम प्रेम भक्त को नहीं रहाओ अनक सुख चक भी नहीं चात आनंद पूर्ण एक दी आन पावना जीवत मीना बिंजल मरना तेह हम अनाथ नाथ हर शरणी अपनी कृपा करें चन कमल नानक आराधे तिस बिन आन न कहें जय श्री महल्ला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग भेटे पूर्ण पुरख सजान रहा प्रेम ठगौरी जिनको पाई तिन रस पियो भारी ताकि

कोट बिघन बिन से सर सेवा नेचल गोविंद ताम भगवंत भगत को किस नहीं आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गो नानक सुख समूह विश्राम जय श्री मल्ला नौमा इक्योंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उर जायो जो जो कर्म कियो लालच लगते ते आप बंधायो रहाओ स्वामी न परी बिखे रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी जो जानो नाहिं बन खोजन को तायो रतन राम काटी के पीतर ताको ज्ञान न पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैत श्री महला नौमा हर जू राख लियो पत मेरी जम को त्रास बिन भयो अर अंतर शरण गही कृपा नित तेरी रहाओ महापते मुग्ध लोभी पुन करत पाप अबहारा भय मर बेखो बिसरत नाहे तय चिंता तन जारा किए उपा मुक्त के कारण दै दिसको उठताया घाटी पितर बसे निरंजन ताको मर न पाया नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजे नानक हर पारियो शरणागत अवे दान प्रभु दीजे जैत

सौ स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को काबू ना संभारा नानक शरण परयो जग बंदन राखो बिरद तुहारा जय श्री महला पंजमा शांत घर पहला इक्यों का सतगुर प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरा चितवो अंध नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगीत शांत संजार हमारे सजन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खजंतिया तिस दस प्यारे से तरी उतार एक पोरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिलपी ना तरी जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जिवे तिसंतिया जान नान गुर पूरा पाया सगल त्रिखा बुझंतिया जार बे प्रे हब्बे सकियां मुँह कही ना जेहियां ये जार बे हिक दो हिक चाड़े हो तिस चितेहियां हिक दो हिक चाड़े अनक प्यारंत कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ ठंडा हो कद पाई गुणतासा जिनी मेंढा लाल रिजाया हो तिस आगे मन डेहियां नानक है सुन बिनो सुहागण मुँह दस डिका फिर जेहियां जार बे फिर आपन पाना किश निसी शंदा जार बे तैरा ब्या लालन मुंदास बसंदा लालन ते पाया आप गवाया जय तन पाग मथाने बां पकड़ ठाकुर हो किदी गुण अवगुण न पिछाने गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किश सुहंदा जान नानक तन सुहागन साईं जिस संग पतार बसंदा जार बेनत सुख सखेंदी सा मैं पाई बर लोड़िंदा आया बजी बाधाई महा मंगल रैस थिया फिर दयाल सद नवरंगिया बड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रिय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महला पंजमा घर दूजा शांत इक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक ऊजा ऊचा अगम पार प्रभ कथ न जाय अकथ नानक प्रभ शरणागति राखण कौ समरथ शांत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गुण असंक अवगुण मेरिया असंक अवगुण खत्ते फेरे नित प्रत सत भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी कुलिये लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड़ पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण।

आठ पैर कर जोर सो प्रभ त्याई है त्याई सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मो विकार दूजा एक सिंह लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है सलोक रे मंता को त्याई है साबित जा कह हाथ राम नाम धन संचिए नानक निव है सात शंत सत लिया प्रभ एक दूसर नाही कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर या सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी भज शरण स्वामी सुखागामी तिस बिना अन्नाही कोए बिनवंत नानक दया तारो जिस प्रावत नाम होए सलोक चित जे चित बया सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख सवाया अशंत अमन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगानिया गै पुजा लीने दया कीने अपने कर मानिया लय अंक लाए हर मिलाए जानू मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैत श्री महला पंजवा पादानु संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोह मोह अभिमान बुढ़े

कार हर हरे, छड्यो हब आप लगड़े चरना पास, नथड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी, मेल लियो दयाल टह पै द्वारिया, रख लेवो दीन दयाल भ्रमत बहारिया, भगत बछल तेरा बिरद हर पते तू उधारिया।

दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन है। निर्मलंग संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चांदना सारदरो तमूल न मिट्टी काम सील थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चन कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोबिंद निरपौ भय मन तोट न आवे मूल संचया नाम धन संत जना सिव संग पाइये बड़े पुन आठ पैर हर त्याए हर जस नित सोन सलोक दया करन दुखरन उचरंग नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त न माया पाहे बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जा पौड़ी जा प्रभ भय दयाल न व्यापे माया कोट आगा गय नास हर इक त्याया निर्मल भय शरीर जंतूरी नाया मन तन भय संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोग पुल सवाया सलोक गुण गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण गुर दयाल समरत गुर गुर नानक पवित उदाहरण भवजल भौजल बिखम असगा गुर बोहते तरियाम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग फर जपे गुर कृपाल जब भय त अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लिने अपनस दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे श्लोक दृष्टांत एको संयंत एको वर्तांत एको नर हरे नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करे हिक सेवी हिक समला हर इक पै अरदास नाम बखर धन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एह सब किश आपे आप दूजा कहाँ कहो आप करो प्रभ दान आपे आप लेहो आवण जाना हुक्म सब ने चल तो थेओ नानक मंगे दान कर कृपा नाम देहो जय श्री बाणी भगतां की क्यों कार सतगुर प्रसाद नाथ कछु न जानो मन माया कह हाथ बिकानो राव तुम कही सो जगत गुर स्वामी हम कही अतकल जुग के कामी इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो पल पर हर जी के अंतर पारियो जत देखो तत दुख की रासी अजो न पत्याय निगम पैसा की गौतम नार उपापत स्वामी शीस धन सहस पग गमी इन दूतन खल बद कर मारियो बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो कह रविदास कहाँ कैसे कीजे बिन रघु रात शरण का कीली।

राग टोडी माला चौथा कर पहला हर बिंद रह न सके मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुरु मेले बहुर न पव जल फेरा रहाओ मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी अनैनो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाए हर पादर हर प्रभ केरा हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा हर हृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लो बिकार जिना मन लागा हर बिसरिया पुरख चंगेरा ओ इस मन मुख मूड अज्ञानी कहिए जिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाथ गुरु ते पाया तुर मस्तक भाग लिखेरा टोडी महला पंजवा घर पहला दुप दे इक्यों का।

जी को नाम मने साधारे, जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है, नाम मेरे परवारे, नाम सखाई सदा मेरे संग, हर नाम को निस्तारे। विखे बिलास कहियत बहु तेरे, चलत न कछु संघारे। इष्ट मीत नाम नानक को, हर नाम मेरे भंडारे। टोडी महला पंजवा, निके गुण गाओ मिटी रोग, मुख उज्जल मन निर्मल होई है। तेरो रहे इहां उहां लोग रहाओ, चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपद बाद अहंकारा, मान सोई सो होग। संत टैल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखो। को नानक एक बिंदु जा, अवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा। चिंता लाहे हमारी रहाओ, अवर न सूझे दूजी ठार। हार परयो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छोटे, हम निर्गुण लेओ भारी। सद बख्शंत सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख ले होए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल नित गायन। शांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायन। रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे, से भर के चरण रसायन। जन मन दूं ते छुटे, भव जल जगत रायन। खोजत खोजत तत् विचार्यो, दास सुख बिंद परायण। बिनसी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर।

जल जम जो ही न सके संच का पंता थाट्यो खात खाचत किश निखुटर नाही राम नंतन खाट्यो पसमा भूत हुआ किन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोक सवाया टोडी महला पंजमा किरपन तन मन निगम कहे जन नानक सब देखे लोक सवाया टोडी महला पंजमा किरपन तन मन किलबक परे सा संग भजन कर स्वामी ढाकन को इक हरे रहा अनिक छिदर बोहित के छुटक ताम न जाही करे जिसका बोहित तिस आरा दे खोटे संखरे गली सैर उठावत चाहे ओ इहां ही है तरे सोर सकत नान किश नाही गरबड़ा को शन परे टोडी महला पंजमा हर के चन कमल मन त्याओ आठ कुठार हित पित मात हंता औकत हर को ना रहाओ तीने ताप निवार हंदा दुख हंता सगरास ताको बिघन को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वै नारायण कारण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजमा हर हर नाम सदा सद जाप तार अनगो पार ब्रह्म स्वामी बसदी कीनी आप राव जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से सो

रस ने कीरत प्रभ गाई रहाओ, जग झूठे को साच जान कै ता स्यो रच अपजाई, दीन बन सिमरियो नहीं कब हूँ होत सो संग सहाई, मगन रहो माया मैं निस्तिन छूटी न मन की काई, कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की शरणाई, टोडी बाणी भगता की इक्योंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्भा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कायरे बकवाद लायो जिनहार पायो तिने छपायो रहाओ, पंडित होय के बेद बखाने

जन को प्रतज्ञा आई एकासी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई भनत नाम देव सुकृत समत पै गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए।

लीट, जिनके चोले रतड़े प्यारे कम तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास, आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे, नानक आवण कंते भावे आपे हीरा बे, तिलंग महला पहला या नड़िए मानड़ा काय करे, आप नड़े कर हर रंगो की ना माने, सौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या टुंडे, पैकियां दे सलाइया नैनी भाव का काशी गारो, ता सुहागन जानिए लागी जा सौ

आपे हर एक रंग है आपे बो रंगी ज्योति सुभावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवा काफी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी शिन शिन औद बिहात है फूटे।

मर न पछाना, अजहो कछ बिगरियो नहीं। जो प्रभ गुण गावे कहो नानक तै भजन ते निरपै पद पावे। तलंग महला नौवा जाग लिहो रे मना जाग लिहो, कहां गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। रहाओ मात पिता सुत बंद जन हित।

sab safana samano tlang mahalla nova har jas re mana gaaye le e jo sangi hai tero avsar bityo jaat hai kahyo man la mero rahao sampat harath tan raj seo at neho lagayo काल फांस जब गल परी सब पेहो पर आयो जान बूझ के बावरे तै काज बिगारियो पाप पुकार के गो गो प्रभ सर पाप करत सुख्यो नहीं न गर्भ निवारियो जय बिद गुर उपदेसिया सो जन रे भाई नानक कहत पुकार कह गो प्रभ सरनाई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जो कहरो हाजिर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे एहो जो दुनिया सहर मेला दस्तगिरी नाहे रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक म्याने स्याम मूरत नाहे असमान महाने हलंग दरिया असमान महाने हलंग दरिया गुसल कहां करदन बोध कर फकर दायम लाए चश्मे दै तहां मौजूद अल्लाह पाहक पाक है सक करो जे दूसर होए कबीर कर्म करीम का ओह करे जाने सोए नाम देव जी मैं अंदले की टेक तेरा नाम।

छुटे जित सोही महला पहला जप तप का बंद बेहलड़ा जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला

इन जे गुण होवे गंठड़िया मिलेगा सोई मिलया होया ना विछड़े जे मिलया होई आवा गौण निवारिया है सच्चा साचा सोई होमे मार निवारिया सीता है है चोला गुर बचनी फल पाया सह के अमृत बोला नानक कहे सहेलियो सो खरा प्यारा हम केरिया दासियां साचा खसम हमारा सूही महला पहला जिनको भांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाहे सर पर तार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाओ देवे दीखिया चाले सतगुरु पाए भवे ना भीख्या जाको महल हजूरे जाको महल हजूर दूसे निवे किस दर दर वाणी नाहे मूले पुछते से छूटे ताहां के बोल साहेब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मते कोय ताहे उसारे साज जाने सब सोए नानक नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला भांडा छा सोए ए ज्योतिष भाव सी भांडा आत्मलीन तोह तोता अच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए अच्छा होए सी मैले अच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या बेचारा तेहो लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब

तैसो जैसा कहा कर दिए, जैसी कर्म कमाए, जो दम है चेतना आवे सो दम बिरथा जाए, एहो तन वेची बह करी जे को लय विकाए, नानक कामना आवे जित तन नाही सच्चा नाओ, सुही महला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जोग ना खिंदा जोग ना डंडे जोग ना भस्म चढ़ाइए, जोग ना मंदे मोड़ मड़ाइए जोग ना सिंजी जवाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए जोग जुगत इव पाइए, गली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाइए जोग ना देस दिसंतर भवि भविए, जोग ना तीर्थ नाइए अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए, सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाइए, निजर चरे सहस धुन लागे घर ही परचा पाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए जोग जुगत इव पाइए, नानक जीव त्या अमर रहिए ऐसा जोग कमाइए, वाजे बाजो सिंगे वाजे तो निरपो पद पाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए जोग जुगत तो पाइए, सुही महला पहला कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराफ बुलावा, कौन कौन गुरु कै पै दीख्या लेवा कै पै मोल करावा, मेरे लाल है जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयल भरपुर लेना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ, मन तराजी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा, घट ही पीतर सो सो तोली इन बिद चित रहावा, आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे आपे है वन जारा, अंदुला नीच जात परदेसी खिन आवे खिल तिल जावे, ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मोड़ा पावे, राग सुही महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, मन राम नाम अराध्या गुरु शब्द गुरु गुरु कह, सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावे राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया हर पिया रस गट के, रहाओ सत संगत उदम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सत संगत हम धोवे पग जन के, राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तेस तेस के, हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचियो सिर गुर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के, सुही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिनसे दाल दलगा पौज जन्म।

हर हर ध्याए मन मेरे मन ध्याए हर जन्म जन्म के ए सब दुख निवारण हर हर हाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे तिस हलत पलत मोहकारा से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाइए सिर निंदक कह पवे शारा जिस घर वरते सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करत बिचारा चौह पीढ़ी आदि जुगाद बखेले इकने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सुही महला चौथा जिथे हर अराधिये तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसे होरत बिद लिया ना जाई हर तन संचिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगति ए संग हर तन खटिए होर तै होरत ओ पाए हर तन किते ना पाई हर रतन का व्यापारी हर रतन धन विहाजे कच्चे के व्यापारिये वाक हर धन लेहा ना जाई हर धन रतन जवे हर मानक हर धने नाल अमृत वेले वते हर भगती हर लिब लाई हर धन अमृत वेले वते का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर धने की ए भगता कोमली वडियाई हर धन निरभौ सदा सदा अस्थिर है साचा एहो हर धन अग्नि ते तस्करे पाणिए जम दूते किसे का गवाया ना जाई हर धन को उच्च का नेड़ ना आवी जम जगाती दंड ना लगाई साकती पाप करके बिख्या धन संचया तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दुहेले पहे हथों छुटक गया अगे हम पलत सातक हर दरगे ढोए ना पाई इस हर धन का साहो हर आप है संतो जिसनो दे सो हर धन लद सा चलाई इस हर हर धने का तोटा कदे ना आवी जन नानक को गुरसोजी पाई सुही महला चौथा जिसनो हर सो परसन होए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णिए जिसके हृदय वस्या हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसते पाइए परम निधान जो दूजे पाहे साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेव दे सो नैफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गाव्या न थाए पवे सो पावे दरगह मान जो बिन प्रतीति

कर कृपाया पनवारे, कौ नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारे। गुण गपाल गावो नित सखियो, सगल मनोरथ पाए रामा, सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक ओंकार थे आए रामा।

गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संग संग बने जिस उद्दम जिन उद्दम किया ताल केरा तिस की उपमा क्या गने अड़सर तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द धारा गुण निदान मेरा प्रभ करता उस्तत कौन करी जय रामा संतां की बेनती स्वामी नाम महारस दीजे रामा नाम दीजे दान कीजे बिसर नाही एक खिनो गुण गपार उचर रसना सदा गाइये अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेते मंतन अमृत पीजे बिनवंत नानक छपूनी पेख दर्शन जीजे राग सोई महला पांजवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी।

सेवती सार न जाने सदा वसे शैतान गधों चंदन खोलिए से पी साहो से पान नानक कूड़े कतिए कूड़ा तनिए तान कूड़ा कपड़ कछिए कूड़ा पहनन मान महला पहला बागां बुरगां सिंगिया नाले मिली कलान एक दाते एक मंगते नाम तेरा परवान नानक जिनी सुन के मन्या हूं तिना बिठो कर भान पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो होए गया होमे झगड़ा पायन झगड़े जग मुआ गुरमुख झगड़ चुकायन इको रब रिहा सब आत्म राम पछाणिया भव जल तर गया ज्योत समाणी ज्योत बिच हर नाम समेया श्लोक महला पहला।

तू दयाल दया पत दाता क्या है जंत बिचारे मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख बखाने गुरमुख होए सो मुक्त कही है मन मुख बंद बिचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाए सच्चे आप सभारे परम भलाए से मनमुख कहिए ना और बार ना पारे जिसनु नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहे न सतारे नानक भाग होवे जिस मस्तक कहले मार बिधारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तुलिया जाए दूजा होए तसोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसकी कीमत की कू होए गुर प्रसाद बसे मने आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराब कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिस नू मेले सो निर्मल होए जिसनु लाए लगे तिसे आए सब सच दकाले ता सच समाए आपे लिवतात है आपे आप बजाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कहे बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है सह में एक समाना सतगुर परचे हर नाम समाना जिस कर्म हुए सो सतगुर पाए अंदन लागे सहजते हन्ना राव क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना जब अपनी ज्योत खिचे तू स्वामी तब कोई ओ करो के दिखा बिखे आना आपे गुरचेला है आपे आपे गुणी निधाना ज्यो आप चलाए तिवे कोई चाले ज्यो हर पावे भगवाना कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा इकना करमे दे बड़े आई एक परम पवे अभिमाना बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरे बेको एक समाना इस परपंच में साचे नाम की बड़े आए मत को तरो गमाना सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना ए वाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा राव चौं जुगा का हुन निवेड़ा नर मनुखा नु एक निदाना जत संजम तीर्थ उना जुगा का धर्म है कल मैं कीर्त हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पराना गुरमुख जिनी ते आया हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चुके माने अभिमाना कहत सुन सबे सुख पावे मान तम पाहे निदाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हूं तिन बलिहारे जिन हर मन बसाए हर जन को मिलिया सुख पाइए हर गुण गावे सहजस पाए राम सदा रंग राते तेरे चाए हर जीव आप बसे मन आए आपे सुबा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मलाए गुरमुख राते शब्द लगाए निज कर वासा हर गुण गाए अज्ञान रंग चलूले हर सपाए एहो रंग कदे न उतरे सच समाए अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा सो जो सच राते तिन बहुड़ न फेरा नानक नाम दड़ाए पूरा गुर मेरा बिलावल महला तीजा पूरे गुरते बड़ियाई पाए अचित नाम बसिया मन आए होमे माया शब्द जलाए दर साचे गुरते सोभा पाए जगदीश से बो मैं अवर न काजा आंदेन आनंद होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा राव मन की प्रतीत मन ते पाए पूरे गुरते शब्द बजाए जीवन मरण को संसार वेखे बहुत न मरे ना जम फेखे कर ही मैं सब कोट निधान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ध्यान आंदन गावे एको नाम इस जग में बड़े आई पाए पूरे गुरते नाम ते आई जय देखा तै रिहा समाए सदा सुखदाता कीमत नहीं पाए पूरे भाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक तृष्णा बुझी मन तन सुख पाया राग बिलावल महला चौथा कार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रभ अंतर।

जागत अनुसार दातन लागो बाल मोको दिजे दान प्राव संतन भगरा लूप सियान विकास नहीं नाही कर काल भ्रम पै रखो मोते काटू जम जाल बिनो करो कर ना पते।

लाग माया तारी छत्रपा तेन छोड़ो ते आगरा संतन का दान रूखा सोदा सर्वदान गृह साक्त सती प्रकार विघु समान भगजना का लूकरा उठ नगन्ना हुई साक्त सिर पाओ रेशमी पहरत पद खोई साक्त समख जो रयाद बीचो टूटे हर जन की सेवा जो करे ए तूत है छूट है सब कर तुम ही दे हुआ आप बणत बनाई दर्शन भीत साधका नानक गुण गाई वृंदावन मोहल्ला पंजवा रबणी सुनो हर हर हरि ठाकुर जस गावो संत जन कर सीस हर हर नाम ते आवो।

सास ने विसरे अनकते न तहावो सफलता सुन गुरु पेटिए मान मोह मटावो सासों तोक दया धर्म शिकार बनावो सब सुहागण नानका अपने प्रभ भावो बुलावर महला पंजवा अटल वचन साधु जना सब मैं प्रगटाया जिस जन होवा सास संग तिस भेटिया।

गुरपुरा रात दिया हुए कृपाल, मार्ग संत बताया तूते जम जाल, दुख भूख संसार मिटिया काल प्रभ नाम, सह सुख आनंद रस।

सुख दुख से मन की व्यथा तुझी आगे सारे, तू मेरी ओट बल भगतन तो में, तुम है मेरे परवारे, जो तुम करो सोई भला हमरे पेख, नानक सुख चरनारे। बला महला पंजवा, सुनियत प्रभ तो सगलो धारण, मोह मगन पत संग प्राणी, ऐसे मन विसार जाओ सच विख्यारे, राज की नियमत मन ते धारण, काम करो लोभ रत निंदा शासन तुग बदारने, ते काढ़ लो मेरे स्वामी हर प्रेतों सार, नानक की बनाती प्रापै साध संग।

यह नानक का रखा प्रभु स्वामी के मान सुबह परे करिए बलावन महला पांच ऐसे काहे फूल परे करे करावे मुकर पावे पेख सोंत सदा संग हरे रहाओ काच बिहाजन कांचन साजन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया में लपटाए जरे अंत को मैं परे प्राणी परम

तिस रसना का मोल किस नाही रहाओ। कुल समोह देखन भीतर जन जन की मलाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना आनंद से तीवी खिया बन गाही। चरण प्रभु के बहुत पाए भव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर ताकी, नानक मरला गह ताही। बुलावल महला पंजवा, तीरो दे तुम्हारे रंगा। तुम स्वामी अंत जमी तुम्हें साध।

काट उठा रखा सुम सिर काटिया आखिर में हो गए खाक मंदा चेत भर चेत बचिया जिन रचिया तंदी न थाक उत्तर मीर तन किशु न रहो सो छोड़ गया सब भाई साक को नस प्रा बलहारी जन जन का कीनो पूर्ण वाक बुला बला पंजवा पूरे गुरु की पूरी सेवा पिया भरते स्वामी काजराज किया गुरुदेव रहो आत्मा प्रवंत स्वामी अपना थाट बनायो आप अपने सेव किया पे राखे प्रा मेरे को बड़ प्रताप पार परमेश्वर सतगुर।

महाविकार को और दुख सागर तिसमें पाणी मैं प्राणी गलत पया कन पर नाथ स्वामी की बाप कर प्रभ काड लया बुलावर मल्ला पंजवा अपना प्राव आची तो दुश्मन तो उठ रहे चख मार तो कुशल पया मेरे भाई मित्राओ गई ब्याद पाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख हर अंत कनेरे प्रीतम नाम देव रहार जियो पिंड धन दास प्रभ तेरी तू सुमरा स्वामी मेरा दास अपने को रखण हरा नानक दास दाय चेरा बढ़ावल महला पंजो गोविंद सिमर हुआ कल्याण मिटी पाद भया सुख साचा अंतर जामी सिमरिया जान रहा इसके जय तिन किए सुखाले भजना को साचा तान दास अपने की आपे राखी पै भजन उपर करते माण कई मतराई मिटी बनाई दुख दू तार गाडे छान सुख सहज आनंद कंधेरे नानक जीव हर गुणे बखान बलावर महला पंजवा पार ब्रह्मपरा भई कृपाओ अलकार सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भय निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले पैर वाल कंठ लाए राखे जन अपने उतर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल कर आए निंदक मुखोए काल को नानक मेरा सबगर पूरा।

मोहे प्रतिपाल पारवान परमेश्वर ठाकुर हम बार तुम पिता कृपा रहा हो मोहे निरंकु ना ही कोई पहुँच न ठाकुर तुम्हरी घर में तुम ही जाना जीव सब तुम माल।

जीवो नाम सुनी जोसो प्रसन्न पै गुरपुरे ता मेरी आस पुनी राव। पीर गई वादी मन धीरा मोहो अंतुनी उपजो चाव मिलन प्रीतम रह न जाए किने अनक भगत अनक जन तारे मेरे अनक मुनि अंत ले टिक निर्धन धन पायो प्रभु नानक अन गुणी राघु रावण मल्ला पंज वाह करते रमा पड़ताल।

जमल गण का जय सुमृत मुक्त पहे जी जानो राव गज की तासमी छेनु मैं जब ही राम बखानो नाद कह सो तो तू बालक भजन माए लपटानो।

पल धर्म ताही तो मानो साच कहत मैं याको। जैसे पाहन जल में राखियो भेदे नाहे ते पानी, तैसे ही तुम ताहे पछाणो भगत हीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर जय भेद बतावे, को नानक सोई नर गरुआ जो पराव के गुण गावे। बुलाव

परे भरैया शास्त्र वेद प्राण प्रकारे धर्म करो खट कर्म लैया मन में पखंड परम गुते लो लहर ना पर बुढ़िया नाम जपो नामे गत पाओ सिमर जात नाम लैया होमे जात नैम रहो वे गुण परचे परम पद पैया इहो जग वन रूप सा तेरा जित ला विषय कर्म कवैया नानक जंत बजाए वाजे जित पावत राज लैया अवर अवर महला चौथा गुरमुख आगम गोचर ध्याया।

जन मेले जा सत सत सतगुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे रवि आए मिले खिन ढील न पैया कर कर क्रिया चार बधाए मन पखंड कर्म कपट लोभिया बेसवा के कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम सुमैया प्रभ आन आन मेहंदी पी साई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकर कृपा तारी बाँ पकड़ नानक कट लिया राग बलावल मल्ला पंचमाष्टपदी कर बार माइको अंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात न कही मेरे प्रभु की उपमा जात न कही ता जान सन कही रहो प्रभु चरण कमल पा रहो जाओ सत बलहार मन प्रीत लगी ताहे तज आन क तेरा जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कलम दहन चढ़ नाम संत उधार पैतर सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत हर ए संत निर्मरी तज गए पाप विकार हर मिले प्रभु नकार प्रभु पेखिए विस्मार रख अंत पूर्ण साध न दोलिए ऊत प्रभ बसे हर अचीत ते नाय नत निवास नित सिमर प्रभु तात जम न पेखे नैन सुन मोहि अनंत बैन हर सन सुरग पाल प्रभ भगत बस दयाल हर निगम रहे न भेद नितर करे मुंडा से दुख दीन दर्द न बार जाकी महा बिखड़ी कार ताकि मित न जाने कोई जल मैयर सोए हर बंदना लख बार थक परो प्रभ द्वार प्रभ करो साधु तू नानक मसा पूर्व बलावल महला पंजा

मेरे जो अंति अवसर रख न सखासा। हर जप मंत गुरुपदेश लै जप तिन अंत छड़ाए जिना प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतोए छूटन का साचा प्रवासा। गौण महला चौथा। हर सिम सदा होय आनंद सुखंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बो जलता गुर सस देखे लह जाए।

जो तुदनों सब नू रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पढ़ई है, हर बिन को मार जीवाल न साकै, ता मेरे मन कायत कढ़ई है रहाओ। हर परपंच किया सब करता है, विच आपे अपनी जोत रही है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपुरे हर एक दिखई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चो रही है। ने कपट सेवा की जय हर केरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दै वस सब किछ, सो सब नू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्याई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुझ। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुझ लई छड़ई है। गोंड महला चौथा।

जातु कतन सहाय रहाउ, रंग कराओ जा कै एक समान, कोट हस्त सगल पुराण, बियो पूछ नमसल तरै, जो कुछ करै सो आपै करै, जाकंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट घट सब कट आधार।

हमारे, जन्म जन्म के पाप हरे, राम जब जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे, रहाओ गुर के चरण हृदय उतारे, अगन सागर ते उतरे पारे, जर्मन की मिट्टी उपाद।

सगले बख्शेंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल, पार ब्रह्म जब सदा निहाल, रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, कट कट अंतर सर्व समाही, अपने दास का हल पल सवार है, पदत पावन प्रभ विरद तुम्हार है, औखद कोट सिमरा गोबिंद, तंत मंत भजिए भगवंत, रोग सोग

मंतन की सब मिटा बलाए, दुख अंधेरा सगला जाए। हर गुण गावत रिये संसार, वड भागी पाइये पुरख पार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, तिसको पोन सके जमकाल। जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खसम पछाण।

आओ। ना हे बूढ़ा ना हे बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना ए बिनसै ना ए जाए, आठ जुगादी रहा समाए। ना इस उसन नहीं इस मीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं सोग, सब किछ इसका ए करने जोग। ना इस बाप नहीं समाया, ए पर अपरंपर होता या पापुन का इस लिप ना लागै, कट कट अंतर सद ही जागै। तीन

अचल छेद भेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ताकि गत मित कछु न पाए नानक ताकै बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन कै बलिहारै जाओ संतन कै संग राम गुण गाओ संत प्रसाद किर बिख सब गए संत शर।

काम को दिस्तन ते जाए, राम रतन वसै मन आए, सबल जमता का परवान, पार ब्रह्म निट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागै, जन्म

ये खाति न ये तप कह वैशेख न ये जीव न मृत देख स्मृते को जेव को रो वै जो रो वै सोई पत खो वै गुरु प्रसाद मैट गुरु पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर राम की अंश जिस कागद पर मिट न मंस गौंड टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चलका वै कान कूच बिचारे फूवे फाल या मुंडिया सिरे चढ़ बकाल ए मुंडिया सगलो द्रब खोई आवर जात नाक सर होई रहाओ तू ही तुरी नार की छोटी बाता राम नाम वाका मन राता लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडे आंदन दापे जा है एक दो मंदिर एक दो खाट हमको साथर उनको खाट मूंड पलोस कमर बद पोथी हमको चाबन उनको रोटी।

बसगत पंच करिन डोलै सी जुगत जोको पाले आप तरै सगले कुल तारे सो दूत ऐसी मत पावै नि सुन समाध समावै रहाओ भिख्या भाए भगत पै चलै हो वै सो तृप्त संतोख मुलै ध्यान रूप होय आसन पावै सच नाम ताड़ी चित लावै नानक बोलै अमृत बाणी सुनमा छिंदरा उदु निशानी आसा महिंद्रास विलाए ने चो नानक करते पाए प्रणत नानक गम सुनाए गुरु चेले की संद मिलाए दीखे दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पा भरी है पवन लगे मत जाई सन्मुख सिथ भेडन को आए ने चो देह वड्याई गुरतार तारण हारिया दे भगत पूर्ण विनाशी हो तुझको बलिहार से साधक जोगी अर जंगम एक सद जिन त्याया परसद पैर सिज ते स्वामी अखर जिन को आया जपत संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुरु परमेश्वर नानक भेटे ओ सच शब्द नबेरा राम कली महला पहला सुरती सुरत रलाइया एत तन कर तुहा लंघै जेत अंतर पा तिसै तू रख निस दीवा बलै थक ऐसा दीवा नीर तराए जि देवै सब सोजी पाए रहाओ हच्छी मिट्टी सोजी होए ताका किया मानै सोए करनी ते कर जको टाल ऐथै उथै निबह नाल आपे नजर करे जा सोए गुरमुख बिरला बूझै को तितकड़ दीवा निचल होए पानी मरै न बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोलै वाओ न बड्डा होए जापै जो सिंघासन लोए खत्री ब्राह्मण सूद के वैस निरत न पाइया।

रहन मैं दिनियर। उसर से उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर न जान, गुरबिन समझ न होई। पुरख मैं नार नार मैं पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मैं ध्यान ध्यान मैं जाने, गुरमुख कथ कहानी। मन मैं जोत जोत मैं मनवा, पंच मिले गुरपाई, नान तिन कैसन बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला पहला, जां हर प्रभु कृपा धारी, ताहो मैं विचो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी बिचारी। सो

मस्तक भाग हुए तुर लिखिया तां सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया नंदा, हर नेकी कथा सुनाए। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत्संगत मिल बुद पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए, जो जो कह सुने सो मुक्ता, राम जप सोहाए रहाओ। जेवड पाग हो मैं मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए। दर्शन संदेह का।

कह जन ऊचे नर निंदक डंस लगाए त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए हर के सखा सखाए से हर के चोर वे मुख मुख काले जिन की पैज न पाए दया दया कर राखो अर जियो हम दीन तेरी शरण आए हम बारक तुम पिता प्रमेरे जन नानक बख्श मिलाए राम कली महला चौथा हर के सखा साल जन निके तिन ऊपर हाथ बतावे गुरम साल से जन पाए का कृपा आ मिलावे राम मोको हर जन मेर मन पावे अम्यो म्यो हर सह मीठा मिल संत जना मुख पावे रहाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे हम होत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावे सेवक जन सेवै सेवट भागी रिद मंत्र प्रीत लगावे बिन प्रीति करें बो बाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावे मोको धार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगीले पावे हम काटो काट बाढ़ से डाको जित नानक संत चढ़या वै राम कली महला चौथा जेवड़ पाग हो मैट बड़ मेरे जन मिलद्या ढिल न लाई है हर जन अमृत कुंड सर नीके वड पागी तित नावाई है राम मोको हर जन कार लाई है हो पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल धूर मुख लाई है रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वडूचे जो सतगुरु मेल मिलाई है सतगुरु जे वड्डा वरना कोई मिल सतगुरु पुरख ते आई है सतगुरु शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई है के अपने सवाए आए आए बह गुर आगे है जो बगुल समाध लगाई है बगुला का अग नीच की संगत जाय कुरंग बिखो मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई है राम कली महला चौथा।

त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध न जानै है रत्न कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुरु कै खजानै चर्ज किछ कहन न जाई बस त गोचर भाई रहाओ मोल नाही किछ करनै जोका क्या को कह सुनावै कथन कहन को सोजी नाही जो पेखै तिस बण आवै सोई जानै करनै हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मित आपे जान है आपे हर आपे पूर भंडार ऐसा रस अमृत मन चाखे आ तृप्त रहे आगाई को नानक मेरी आसा पूरी सतगुरु की शरण आई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ ने बैरी सगले साधे जिन बैरी है ए जग लूटे आते बैरी लै बांधे सतगुरु परमेश्वर मेरा निकराज भोग रसमानी नाउ

पद पाया छोड़ नकत हूँ जाता। वर्ण सा को जैसा तू है साचे लख पारा। अतुल था डोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती। तू अडोल कदे डोले ना ही तम ताहम कैसी ताती। एक एक एक एक एक एक तू ही एक एक तू राया तो कृपा ते सुख पाया। राह तू सागर हम हंस तुम्हारे।

तुम सद्गुण गहीरा, तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग गाए, मिलत मिल रहे या नानक कहन न जाए। राम कली महला पंजवा, कर करताल पखावो नै, कर करताल पखावज नैनो, माथे वजै रबाबा, करनो मद बासुरी बाजै, जिहवा तुना गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचै, आने कुंगर साजा, राम को नृत गारी, पेख पेखनहार दयाला, जेता सा शिंगारी, रहाओ अखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चंदो वा, पवन विचोला करत गेला, जल ते उपत हो वा, पंच तत कर पुत्रा किन्ना किरत मिलावा हो वा, चंद सूरज दो जरे चरागा, चौकुंड भीतर राखे दस पातो, पंच संगीता एक है भीतर सातवे, भिन्न भिन्न होए भाव दिखावे, सबो निरारी भाखे, करकर नृत हो वै दिन राति, करकर वाजै तूरा, एक नचावे एक।

कर कृपा राख्यो गुर शरणा, गुर पकराए हर के चरणा। बीज विश्वे जा मन ठहराने, गुर पार ब्रह्मे कहि जाने। जो जो गिनो हम तिसके दास, ब्रह्मेरे को सकल निवास। ना को दूत नहीं बहराई, गल मिल चाले एक।

मैया तिन्हि डीठा राम कली महला पंजवा। पंच शब्द तह पूर्ण नाद नद बाजे अचर बिस्माद केल करें संतर लोग पारम पूर्ण रजोग। सोख सहज आनंद भवन सात संग बैस गुण गावे तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाउ। ऊहां सिमरै केवल नाम बिरले पावै विश्राम भोजन पाव कीर्तन।

चंद्र मूल गहीरा आनंद गुणी गहीरा आनंद बाणी पूंजी संतन हाथ राखी पूंजी सुन समाद गुफा तह आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन भगत संग प्रभु गोष करत तह हरख न सोग न जन्म न मरत कर कृपा जिसे आप दे वाया साध संगत हर धन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी बरतन हर मेरी दास राम कली महला पंजवा मैं मन जाना वेद ब्रह्मे न जाना भेद अवतार न जाना अंत परमेश्वर पर बेअंत अपनी गत आप जान सुन सुन अवर वखान रहाओ शंकरा नहीं जाना भेव खुद हरे देव देविया नहीं जाना मर्म सब उपर लख पार ब्रह्म अपने रंग करता के आप छोरा आपे मेल एक ब्रह्मे एक भक्ति लाए अपना की आप जनाए संतन की सुन साची साखी जो बोले सो पेखें सो बोले जो पेखें आखी नहीं लेप तिस पुन्ना पाप नानक प्रभ आपे आप राम कली महला पंजवा किछु काज न कियो जान सुरत मत नाही किछु ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किछु न जानो कैसा करम ठाकुर प्रीतम प्रमेरे तुझ बिंदु जावर न कोई फूलें चूके प्रभ तेरे रहाओ रिद न बुद्ध न सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गा मैं बास कर्ण हार मेरे प्रभ टेक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीव मन विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगंत जी का दाता जिस जना मैं तिन तू जानता जो उपाय तिस जो उपाय जिस तेरी आस सगल राधे प्रभ गुणदास नानदास तेरा कुर्बान बेअंत साहेब मेरा मेहरबान राम कली महला पंजवा राखन हर दयाल कोट पव खंडे निम ख्याल सगल राधे संजंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीन को दाता मेरा प्रभ पुण परमेश्वर स्वामी कड़कड़ दाता मेरा प्रभ रहाओ ताकि गही मनोट बंधन ते हुई छोट हृदय जा परमानंद मनमाहे पे आनंद तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊंचे ते ऊंचा पार सो मत सार जिधर समरीचै कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुर मिल नाउ राम कली महला पंजवा सगल सियाण छाट कर सेवा सेव सा।

था माथी फाती मछली का जाला टूटा सूखे का सरे जलूल उच्च थल फूले कमलन रूप गनेवारी सतगुरुदेव सतगुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव अगिरद गणा का करे उधार प्रमेरा है सदा दयार जन संत जना का सदा सहाई चरण कमल नान शरणाई राम कली महला पंजवा पंच सिंह राखे प्रमार दस बिगाड़ी लई निवार तीन आवर्त की चुकी घेर सार संग चुके पै फेर सिमर सिमर जीवा गोविंद कर कृपा राख्यो दास अपना सदा सदा साचा बख्शेंद।

निहालम पापुन हमरे वसना हे रसक रसक नान गुण गाहे राम कली महला पंजवा ना तन तेरा ना मन तो हे माया मोह व्यापिया तो कुदम करे गाडर जो छेल चिंत जाल काल चक्र पेद हर चरण कमल शरण आय मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख गुरमुख पावे सत नरहाउ पुण्य काज न उदपूरे काम कोद मद सदि चूरे कर बेकार जियरे कैताई गावल संगत सुब जाई दर्द तो अनिक छल मा जान कौडी कौडी कोस

फुन बैकुंठ सिधावै। अजामल कोवंत काल में नारायण सुधिया, जागत को जोगी सुर बांचत, सोगत छिन्मय पाई।

छिंचन यौद कट निसबासुर वृथा जात है देह रहाओ। तरना पो बिखियन सिंखो यो बालपन अज्ञान बिरद प्यो जू नहीं समझ कौन कुमा तुर जान। मान जम दियो जे ठाकुर सोते क्यों विसरायो। मुक्त हो निर्जा कै सिमरै निमख नता को गायो। माया को मद

सतगुरु प्रसाद सोई चंद चढ़े सितारे सही दिन सोई दिन तप्त रहे तप्त रहे सादरती सो पौन चुलारे जुग जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हो गए परवाना करें दंगाना का लखन विचार रहाओ कि पैदेश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे ना तह ना ही मैल सार ना बैठा जे को सत करे सोची चै तप करे तप न होई जे को नाओ ले बदनामी कल के लखन ई जे सिकदारी ते संखवारी जा करके डरना जा सिकदार है पवे जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है यह ते जो केरा रहा तपावस जे गुण देह ता पाई है रहाओ कल कल वाली सरन बेड़ी काजी कृष्णा होवा बाणी ब्रह्मा वेद थर्पण के करने कीरत लहे आ पत बिन पूजा सत बिन संजम जत बिन काहे जनेऊ नाव धोवो तिलक चढ़ावो सोच बिन सोच न होई।

मैं सुख है। त्रिपुण जो तुम्हारी मनसा मार मन में रख है सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुत नाद वाजे कमल जो तुम्हारी। परपंच बेण तई मन रखे आ ब्रह्म अगन प्रजारी। पंच तत् मिल एनिस दीपक निर्मल ज्योत पारी। रव सस लोके एतन क्युंगरी वाजे शब्द निरारी। शिव नगरी मैं आसन औ दू लख गम पारी। काया नगरी मन राजा पंच।

ब्रह्मा विष्णु महेशक मूर्त आपे करता कारी काया सोतर सागर आत्म तत्विचारी गुरु सेवा ते सदस पाया अंतर शब्द रव्या गुण का।

हम कुचल कुची लत बिमानी मिल शब्दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निसारी सच्चा नाम वस्या खडंतर करत आप सवारी रहाओ पारस बरसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा धारी कबे करें फिर अभिमानी तिन जुबै बाजी हारी एक अंदिन भगत करें राती राम नाम उतारी अंदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी पै बिन भगत न होई कभी वह भाई भगत सवारी माया मोशब जलाया ज्ञान तत विचारी आपे आप कराई करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा कांत न पाया हम गाव शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सलाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरु ते पाया कुट सच्चे भंडारी अपने भगतान आपे तुठा अपनी कृपा कर कलधारी साचे नाम की सदा भुख लागी गाव शब्द विचारी जियो पिंड सब के छह तिसका आखण बिकम विचारी शब्द लगे सही जन स्त्रे बहु जल पार उतारी बिन साचे को पार न पावे बूझे को विचारी जोत लिखिया सोई पाया मिलिया हर शब्द सुबारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी काया अमृत रही भरपूर पाई है शब्द विचारी जो प्रभ खोजे सही पावे हर फूट मुवे अंकारी बादी बिन सह सेवक सेम गुर कहत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारे हूँ मैं कृष्ण मारी गुरुदाता कि न पिछाता जिसनों कृपा करे तो जिसनों कृपा तुम मारी सतगुर न से मैं माया लागे डूमुवे अहंकारी जिस चर अंदर सास तिच सेवा की चै जाय मिलिय राम मुरारी अंदर जात रह दिन राती अपने प्रे प्रीत प्यारी तन मन वारी बार कुमाई अपने गुरु विटों बलिहारी माया मोबिन जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए सही जागे गुरु के शब्द विचारी नानक सही मुवे जे नाम न चेतें भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरु

गाहु रोग सुख परमीजा, गाहू पवन तार जात बिहाए, काहू पवन तार जात बिहाए, संत बिहावे कीर्तन गाए, काहू बिहावे दिन रैन चारत, काहू बिहावे सो पिड़ मालत, काहू बिहावे बाल पढ़ावत, संत बिहावे हर जस गावत, काहू बिहावे नट नाटक निरते, काहू बिहावे जिया ए फिरते, काहू बिहावे राज में डरते, संत बिहावे हर जस करते, काहू बिहावे मता मजूरत, काहू बिहावे सेवा जरूरत, काहू बिहावे सोद जीवत, संत बिहावे हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगना, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड नहीं को सियाना, कर कृपा जिस देवै नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, राम कली मल्ला पंजवा दावा, अगन रहे हर बूट, मात गर्भ संकट ते छूट, जा का नाम सिमरत भौ जाए, तैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जत का देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यो तिखा मिटंत, धन विकसै गृह आवत कंत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किरसानी ज्यों राखे रखवाला, मात पिता दया ज्यों बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखे कंठ लाए, ज्यों अंधले पेखत होए आनंद, गूंगा भगत गावे बहु छंद, गूंगा भगत गावे बहु छंद, पिंगुल पर्वत परते पार, हर कै नाम सगलोदार, ज्यों पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राचत संत संग विनाश, ज्यों साबुन का पर उज्जल होत, नाम जपत सब ब्रह्म पकोत, ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रिक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद कर्ण समाने, त्यों हर नाम हर जन मने त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल भये ता आए चीत, दया तारी तिन कारण तिन धारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, तिस बिंदु जा अवर न कोए, भ्रम पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब बिस्माद, राम कली मल्ला पंजवा, जी जंत सब पेखिय, प्रभ सगल तुम्हारी तारना, एहो मन हर कै नाम उदार।

अमृत आर्य और तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसह दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मल संग साधु दिनस रहन चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत तरह नाम नर हर निदान जिन कै रस भोग एक नारायण रस रूप रंग अनंत पीठल सास सास त्यायणा किलविक हरणा नाम पुन चरणा नाम जन गीत रासरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जानई देख चलत दयाल सुन भगत बखानई जी जन सब तुझ त्यावै पुरख पत परमेसरा सर्व जाचक एक दाता करुणा मैं जगदीसरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पहचानई मोय निर्गुण अनाथ शरणी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी विचुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभु का गुर पूरे ते पाया नाम कनी मल्ला पंजमा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठंगाई है संतन कह किलविक सब दुख बिनासन हर नाम जपिय गुरमंथन कह हर नाम लीजे अम्यो पीजे रहन दिन सराधिय जोगदान अनेक क्रिया लग चरण कमल साधिय पहो भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हर बिनवंत नानक तरह सागर त्याय स्वामी नर हर सुख सागर गोविंद सिमरण भगत गावे गुण तेरे राम आनंद मंगल गुर चरणी लागे पाए सूख कनेरे राम सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा करे प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम भव पागा हर नाम रसना पाख्या हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभ दामोदर माधो अंत न पाई है गुनिया राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारण मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम।

सो प्रभु तरे पव जन रहे आवण जाना सदा सो कल्याण कीर्तन प्रभु लगा मीठा बाणा सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सदगुरु पूरिया बिनवंत नानक प्रभु आप मिले फिर नाही दुख विसूरिया राम कली मल्ला पंजमा छंत सलोक चरण कमल चरणागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभु त्याय नानक प्रभ आराध्य विपत निवारण राम छंत प्रभ विपत निवारणो तिज बिन अवर न कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोय जियो जल थल महियल पूर रहिया एक निमक मनो न विसर गुर चरण लागे दिन सभागे चरब गुण जगदीसर कर सेव सेवक दिनस रहनी तिज भावै सो होय जियो बल जाए नानक सुख दाते परगास मन तन होय जियो श्लोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच चंत पह संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत बुरख एको तुझे सिंह रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अंधन जागा जियो पिंड गृह थान तिसका तन जो बन तन माल जियो सद सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो श्लोक रसना उचरे हर हरे गुण गोविंद बखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निधान चंत सो स्वामी प्रभ रख गो अंचल दा कह लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दी जय आस एक तरणी तरह साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरह जन्म मरण बिकार झूठे फिर न लागे दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन थिर जा का सुहाग जियो श्लोक धर्म अर्थ हर काम

भागियो गृह प्रगटे प्रभ आय जियो गृह लाल आये पूर्व कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेहंत पूरन सुख सहज दाता कवन रसना गुणपणा आपे मिलाए गह कंठ लाए तिज बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मैं रहिया समाए जियो राग राम कलिमला पंजमा राण झुंझुनड़ा गाओ सखी हर एक त्यावो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदेड़ा फल पावो राम कलिमला पंजमा रुति सलोक एको अंकार सतगुरु प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो सत हतूर आप निवार हर हर पजो नानक प्रभ भरपूर किलपे काटन पै हरण सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए चंत जस गावो अडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुति मूरत कड़ी गुण गुण उचरत सोभावंत जियो गुण रंग राते धन ते जन जिनी एक मन ते आया सफल जन्म भया तिनका जिनी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण हर हंत जियो सलोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी साधु भाव सी नानक नाम अधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख मुख मास जियो हर जियो ना मिलिया मौलिया मंथन सास जियो कर ना निश्चर आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगुण सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वट भाग पाया दुख कपाया भई पूरन आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिट्टी जम की त्रास जियो श्लोक साध संग बिन ब्रह्म होई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बाधिया नानक कर्म लेख जो पाने से मिलिया बिछोड़े भी आप नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ प्रताप संत ग्रीखम रुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम बिछो दुहागणी दृष्ण करी राम जियो ना दृष्ट आवे मर्त हावे महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूरन काम जियो सलोक श्रद्धा लागी संग प्रीत में एक तिल रह न जाए मंथन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए गर्गे लीनी साजने जन्म जन्म के मीत चरना दासी कर लई नानक ब्रह्म हित चीत शांत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो कण उनव उठे जल चल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूह सब तरे प्रे रंग जाके न छिद्र लागे कृपाल सद बख्शंत जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन भावंद जियो लोग आज प्यासी मैं फिरो कब देखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ पिलनहार बिन मिल बे शांत न उपजे तिल पल रह न जाए हर साधा शरणागति नानक आस पुजाए शांत रुत सरद अडंबरो असु कत के हर प्यास जियो हो जंती दर्शन फिरत कब मिली है गुणदास जियो बिन कंत प्यारे न सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जय सेतना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्रभ गुणदास जियो श्लोक जरण बुझी शीतल पए मंथन उपजी शांत नानक प्रभ पूरन मिले द्वितीया वंशी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमण राम भरपूर चंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेविया हार डोर श्रृंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेविया भाव भगत गोविंद बांझत जमन साके जो जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहन प्रेम बिछो जियो श्लोक हर धन पाया सुहागणी डोलत नाही जीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोड प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछंत फल पाया हर नानक नाम पने छंत हिमकर रुत मन भावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो
ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन ते आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिणम त्रे भवन पय हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिल स्वामी इच पुन्नी, मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित

गही, टूट प्रीत गई बुर भोल, दुर्मत पर हर छाडी डोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी कर कारजार, लाहा साच न आवे टूटा, त्रिभवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाए, ठहक मुई अब गुण पछताए, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पार कर जाती ठाकर हाई, महल बुलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साज प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, ढापन तन सुख नहीं।

डूगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर, तिखा निवारी शब्द मन अमृत बिया भरपूर। दे दे आखे सब कोई जय पावे ते दे, गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए। टंडोलत ढूंढत हों फ्री टह टह पवन करार, पारे टहते टह पे हौले निकसे पार। अमर अजाची हर मिले तिनके हों बल जाऊं, तिनकी तोड़ अकुली है संगत मेल मिलाओ। मन दिया गुर अपने पाया निर्मल नाओ, जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बल हारे जाओ। जो सारे सोटा हसी तिस मिन अब न कोय, गुर प्रसादी ते संभला ता तन दुख न होए। ना को मेरा किस कही ना को हुआ ना होग, आवण जान विकुचिय दुबदा व्यापै रोग। राम विहुणे आदमी कलर कंध ग्रंथ, गण नाम है क्यों छूटिय जाय रसातर अंत। गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए, अज्ञानी मत हीन है गुड़ बिन ज्ञान होए। टूटी तंत्र बाप की वाज्य नहीं विजोग, विचुणिया मिले प्रभु नानक कर संजोग। तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत जुगे मिल एक से तिन को फास न रंच। उड़ता बेगुल बेगुले ताके जोग कणी, पंख तुटे वाही पड़ी अवगुण पीड़ बनी। बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटी है वड्डा आप धनी। गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे, अपने हाथ वड्याईया जय पावे तें दे।

मन दी जय सिर सौंपिए भी करते की टेक। तंदा तावत रह गए मन में शब्द आनंद, दुर्जन ते साजन पे पेटे गुरु गोविंद। बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही कर बार, सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार। नाना करत न छूटिए विण गुण जमपुर जाए, ना तिस एहो ना ओहो है अब गुण फिर पछताए। ना तिस ज्ञान ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान, विण नावै निरपौ कहां क्या जाना अभिमान। थाक रही किव अपड़ा।

गुर कहे देव अपार, पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा, पर हर पाप छाणे आप, नाथ सोग विजोग संताप, नरक पढ़न तो क्यों रहे, क्यों बंचे जमकाल, क्यों आवन जाना विसरे, झूठ बुरा खै काल, मन जंजाली बेड़िया पी जंजाला माहे, विण नावे क्यों छूटिया, पापे पछे पचाहे, फिर पाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ, पाथा चोग चुगे नहीं सूझे, सतगुर मिले ता आखी सूझे, ज्यों मछली फाथी जम

ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖੇ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋ ਗਏ ਵਾਸੋ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਤਿਨ ਨਤਮਾਈ। ਕਿਉਂ ਤੱਤੈ ਅਵਗਤੈ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਗੇ ਪਿਆਰੋ। ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ ਗਤ ਮਿਤ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਈ। ਆਦਿ ਕੋ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀ ਅਲੇ ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਲਿਆ। ਅਕਲ ਪਤ ਮੁਦਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਅਲੇ ਘੜਕੜ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਅਵਗਤ ਸਮਾਈਐ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਹਿਜ ਲਹਿ। ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਕਰਨੀ ਸੇਵੈ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਹੋਜ ਲਹਿ। ਹੁਕਮ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁਕਮ ਬਚਾਣੈ ਜੀ ਜੁਗਤ ਸਚ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਆਪ ਮੇਰ ਨਿਰਾਲਮ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰ ਸਾਧ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਅਵਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਰ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਬਦ ਪਾਈਐ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਲਿਆ। ਏਕੇ ਕਹੋ ਸਚ ਏਕਾ ਜਾਣੈ ਹੁਮ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਿਆ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸੂਝੈ ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆਂ। ਸਾਚਾ ਉਪਜੈ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਏਕ ਮਿਆ। ਝੂਠੇ ਆਵੇ ਠਵ ਨ ਪਾਵੇ ਦੂਜੇ ਆਵਾ ਗੌਣ ਪਿਆ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਆਪੇ ਵਰਖਿਆ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਏਕਾ ਵੇਦਨ ਦੂਜਾ ਵਿਆਪੀ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਵਿਸਰਿਆ। ਸੋ ਪੂਜੈ ਜਿਸ ਆਹ ਪੂਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਮੁਕਤ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹੁਮ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੈ ਜਮਕੀ ਕਾਣ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਣੇ ਹਾਣ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਪਵੈ ਬੇਬਾਣ ਵੇ ਮਾਰਗ ਮੂਸੈ ਮੰਤਰ ਮਸਾਣ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਣ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਥੇ ਸੁਖ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਘਾਹ ਪਹੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਖੜ ਸਖੜਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਤਰੀਏ ਤਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਅੰਤਰ ਵਿਦ ਜਾਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਥੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਆਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ ਨਾਨਕ ਹੋਮੈ ਜਾਲ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ ਤਿਸ ਮੈਂ ਓਪਤ ਖਪਤ ਸੁਬਾਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਪੈ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸਾਚ ਰਤੋ ਪਤ ਸਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਉਂ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਦੀ ਸਭ ਹੁਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਤਰੀਐ ਸਤ ਸੁਧੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਅਪਸਰ ਵਿਦ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਵਿਰਤ ਨਰ ਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹੁਮੈ ਜਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬੋਲੇ ਸਭ ਵੇਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਗਉ ਜੈਕਾਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਬਾਰਹਿ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਛੇ ਚਾਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰਜੀ ਵੈ ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਧਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਲਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਖੈ ਰਤਨ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਨਪਤੀ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਭਉ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘੜਘੜ ਭੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨ ਪਵਈ ਥਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਅਤ ਡੋਲਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬੇਖਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਸਿਆ ਡਸੈ ਮਰ ਵਾਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਨ ਘਾਟੇ ਘਾਟ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟੈ ਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੈ।
मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमो कदे न आवे हार तन हटड़ी एहो मन वण जारा नानक सहजे सच वापारा गुरमुख बांध्यो सेत बिधातै गुरमुख बांध्यो सेत बिधातै लंका लूटी दैत संतापै रामचंद मारियो अह रावण भेद विभीखण गुरमुख परचायण गुरमुख शायर पाहण तारे गुरमुख कोट तेतीस उधारे गुरमुख चूकै आवण जान गुरमुख दरगाह पावै मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख दरगाह सिर समाए नानक गुरमुख बंध न पाए गुरमुख नाम रंजन पाए गुरमुख होमे शब्द जलाए गुरमुख साचे कै गुण गाए गुरमुख साचे रह समाए गुरमुख साच नाम बत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल भवन की सोजी होए कवन मूल कवन मतवेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला कवन कथाले रहो निराले बोले नानक सुनो तुम बरले एस कथा का दे विचार पवज शब्द लंगावन हार पवन आरंभ सतगुर मतवेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला अकथ कथाले रहो निराला नानक जुग जुग गुर गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अगन निवारी मैन के दंत क्यों खाइए सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवै का कर मंदर अगन पिराहन कवन गुफा जित रह अवाहन उत किसको जान समावे कवन ध्यान मन मने समावे हो मैं विचों खोवे दूजा मेटा एको होवे जग करड़ा मनमुख गवार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मरे सतगुर कह पाणे सच पहराता गर्भ निवार है एको जाता शब्द विचार है शब्द वसै सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिक अगन निवारे नानक नदरी नदन प्यारे कवन मुख चंद हिवे कर छाया कवन मुख सूरज थबै थपाया कवन मुख कार जोहत नित रह कवन बुद्ध गुरमुख पत रह कवन जोत जो खाल सिंगार है बोले बाणी नानक विचार है शब्द पाकत सच जोत अपारा सच कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम अधारा आपे पार उतारण हारा गुर परचय मन सच समाए प्रणवत नानक का न खाए नाम तत् सब ही सिर जापै बिन नावै दुख काल संतापै तत्तो तत् मिलै मन मानै दूजा जाए एकत घर जानै बोलै पवना गगन गरजै नानक निचल मिलन सहजै अंतर सुनंग महर अंतर सुनंग बाहर सुन त्रे पवन सुन मसुनंग चौथे सुनै जो नर जाने ताको बाप न पुनंग कड़कड़ सुन का जाने पियो आदि पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहाँ ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिसते उपजे तही जैसे ओए जन्म न मरे न आवे जाहे नानक गुरमुख मन समझाहे नौ सर सुवर दसवें पूरे तै अनहत सुन बजावे तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहा बरपूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लय सच सोए सहज पाए मिलिया सुख होवे गुरमुख जागे नींद न सोवे सुन सुन शब्द अपरम परतारे कहते मुक्ते सुन शब्द अपरम परतारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीख्या से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते बुद्ध जवावे सोकत ठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखे बिन शब्द दे बिन शब्द ना ही बत साख क्यों कर बुझे पावे पार नानक मनमुख न बुझे कबार कुबुद मिटै गुर शब्द विचार सतगुर पेटै मोख द्वार तत् न चिन्है मनमुख जल जाए दुरमत विछुड़ चोटा खाए माने हुकम सबेज गुण ज्ञान नानक दरगह पावे मान साच वखर तन पल्लै होए आप तरह तारे पी सोए सहज रता बूझै पत होए ताकि कीमत करे ना कोई ज्ञान देखा तह रहे असमाए नानक पार परै सज पाए सो शब्द का कहा वास कथि अले जित तरिय भव दल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिसको कवन अधारो भूल लै के लै अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्द सच लिव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे बिना पूरे भाग समाए
सो शब्द को निरंतर वास अलखं जहाँ देखा था सोई पवन का वासा जन्य वासा अगल कला तर सोई नदर करे शब्द कट मह वसे विचों परम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो नामो मन वसाए शब्द गुरु पव सागर तरिय एतो एको जाने चेन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द बचाने त्रै सत अंगुल वाई औदु सुन सच आहारो गुरमुख बोले तत बिरोले चीन अलख पारो त्रै गुण मिटे शब्द वसाए ता मन चुके अहंकारो अंतर बाहर एको जाने ता हर नाम लगे प्यारो सुखमना एड़ा पिंगुला बूझे जा आपे अलख लखाए नानक तेहते ऊपर साचा सदगुर शब्द समाए मन का जियो पवन कथिया ले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदु सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रसना आवे औदु हमें प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता स नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुर ते का न ग्रास रंग नराता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल जल बलताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या भवन साध्या सच न राध्या अकथ कथाले समकर रह तौ नानक आत्म राम को लह गुर प्रसादी रंगे राता अमृत पिया साचे माता गुर विचारी अगन निवारी अपियो पियो आत्म सुखधारी सच राध्या गुरमुख तत् गुरमुख तरतारी नानक बूझ को विचारी एह मन मैगल कहाँ बसी अले कहाँ बसे एह पवना कहाँ बसे सो शब्द औदु ताको चुके मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज कर वासा एह मन पाए आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख होमै विचों खोवे तो नानक सहज समावे एह मन निश्चल हृदय वसीले गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन कर आसन नाभ पवन कर आसन बैस है गुरमुख खोज तत् लह सो शब्द निरंतर निज कर आचै त्रि पवन जोत सो शब्द लह खावे दुख भूख साचे की साचे ही तृप्तास रह अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावे नानक आखे सच सुभाखे सच रपै रंग कबू न जावे जाय हृदय देह न होती तो मन कैठे रहता नाव कमल स्तंभ न हो तो ता पवन कवन कर सहता रूप न हो तो रेख न काई ता शब्द कहाँ लिवलाई रक्त बिंद की मड़ी न होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण पेख स्वरूप न जापी क्यों कर जाप साचा नानक नाम रते बैरागी ए बताब साचो साचा हृदय देह न होती औदु तो मन सुन रह बैरागी नाभ कमल स्तंभ न हो तो ता निज कर बस तो पवन अनुरागी रूप न रेख्या जात न होती तो अकुलीन रह तो शब्द सोसार रूप न रेख्या जात न होती तो अकुलीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तबे न हो तो त्रिपवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण पेख असरूप सो एको एको शब्द विडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजय पुरखा कित कित दुख बिनस जाई होमै विच जग उपजय पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत् बिचारै होमै शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी साच रह समाए नामे नाम रह बैरागी साच रख्या उतारे नानक बिन नावे जो कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै विरला बूझै कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगे जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर भेटे मुक्त न कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया न जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूँ मैं मार गुरमुख साच रख्या अवतार गुरमुख जग जीता जमकार मार बदार गुरमुख दरगह न आवे हार गुरमुख मेल मिलाए स जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्दे का निबेड़ा सुन तू औदू।

ले सो वेख्या जिस वसिया मन माहे। मन तीजा मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जमे दुख मरे, होमे करत विहाए, आवण जान सुजई अंधा अंत कमाए, जो

लोग कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई राम कसौटी सो सह जो मर्जी वा होए। मल्ला तीजा क्यों कर यो मन मारी है क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई हो मैं छड़े ना कोई, गुर प्रसादी हो मैं छुटे जीवन मुक्त तो होए। नानक जिसनों बख्शे तिस मिले तिस बिगड़।

अंतिन गुण गावे सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे नानक गुरमुख पाइये जाको नदर करे। पौड़ी दूजा पाओ रचायोन त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुकम कमावन कारा। पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझे बिचारा सब कुछ तेरा खेल है सच सृजन हारा। जिस पावे तिस बख्श है सच शब्द समाई लोक मल्ला तीजा मन का झूठा झूठ कमावे माया नो फिरे तपा सदावे। परमे भूला सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोख अंतर पावे। मल्ला तीजा सो तपा जे ओ तप कर लै सतगुर नो मिले शब्द संभाले। सो तपा जे ओ तप कर ले सतगुर नो मिले शब्द संभाले। सतगुर की सेवा ए तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी रात दिन सो पाए न संसार की वर्तन गुरमति कट चानना आनेर बिना

स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप। मल्ला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल में रूपे थम। एन इस अंतर रहते हाँ ते बैरागी सत समान। बोले परथर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप। मल्ला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जोगत कन्न पढ़ाए क्या खाजे भुगत। आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाप जे समकर सह था नानक आखे गुर को कह। छे वर्तारे वर्ते पूत ना संसारी ना अतूत। निरंकार जो रह समाये काहे भिख्या मंगण जाए। पौड़ी हर मंदर सोई आखिया जितों हर जाता। मानस देह गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मुँह न खोजिए कर्म है बिदाता। मनमुख है मंदर की सार न जाननी तिनी जन्म गवाता। समय एक वर्तदा गुर शब्दी बाया जाए। लोक मरला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्खे क्या का मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख हो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एत कमाने सदा दुख दुख ही में रहना। अत प्यारा पवे खूह क्यों संजम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओ सरप तो रहना। हर नाम जपे आप उधर है ओस पिछे डुब दे भी तरना। नानक जो तिस भावे सो करे जो दे सो सहना। मला पहला नानक आखे रे मना सुनिया सिख सही। लेखा रब मंगे सिया बैठा कड़ वही। तलबा पौसन आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई। आवन जान सुजई पीड़ी गल फही। कूड़ निकुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहे या सब आपे। हर की कीमत ना पवे किच कहन न जापे। गुर प्रसादी सा राही है हर भक्ति रापे। सब मंथन हरिया होया अहंकार कवापे। सब किच हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक मल्ला पहला सहन सरदान दे इंद्र रोआया। परम राम रोवे कर आया। अजय सरोवै भीख्या खाए ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवै राम निकाला भया सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवै दै सिर लंक गवाए जिन सीता आदि डौरू वाए। रोवे पांडव भये मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर। रोवै जनमेजा खोय गया एकी कारण पापी पया। रोवै शेख मसायक पीर अंतकाल मत लागे भीड़। रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीख्या जाए। रोवे कृपन संचेत न जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाव सुई जन जाए औरी कर्म न लेखे लाए। मला दूजा जप तब सब किच मन्ने अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मनिया बूझे गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उचरे गुण माय समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब कुछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक मल्ला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना परखण जाए। रत्ना सार न जाणई आवे आप लिखाए। मल्ला दूजा रत्ना केरी गुतली रत्नी खोली आए। वक्कर दै बन जा रहा दुहा रही समाए। जिन गुण पल्ले नानका माणक बन जेट से। रत्ना सार न जाननी अंते वत्ते लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखीजे। बज्जर कपाट न खुलनी गुर शब्द खुलीजे। अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनीजे। तित घट अंतर चानना कर भगत मिलीजे। सब मैं एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। लोक मल्ला दूजा अंधे कह रहे दस्य है अंधा होए सो जाए। होए सो जाखा नानका सो के उजड़ पाए। अंते एह न आखियन जिन मुख लोह नाहे। अंते से ही नानका खसमो गुथे जाहे। मल्ला दूजा साहेब अंधा जो किया करे सो जाखा होए। जेहा जाने ते हो वर्ते जे सो आखे कोए। जिते सो वस्त जा पई आपे वर्तो जान। नानक गाह क्यों लए सके न वस्त पछाण। मल्ला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए। नानक हुक्म न बुझई अंधा कहिया सोए।
ਪੌੜੀ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ ਸਬਦ

बात यही थी कि यार ये था 12 घंटों नर के बाद एक एक एक दूसरा दो राम कल की बार राय बुलाने तथा सके डूम आखि एक ओंकार सदगुरु प्रसाद नाम का था काद करे गए बोल हो जो की ये दे गुना सत भैन भरावे बरंग दान प्रीव दे नर प्राज लाय सच कोट स्थानी नीब दय लहणे तरण छत सिर कर सिवती अमृत पीव दे मत गोर आत्म देव दी खड़ग जो प्राग जी दे गुरु चले जा रस पीना सलामती सट का तो दी जीव दे लहण दी बड़ाई नानका दोई खटिए ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੋ ਸਾਹਿ ਸਹਿ ਖਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ ਝੂਲੇ ਸੋ ਸਤਨੰਜਨੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰਾਟੀਏ ਕਹੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਲਾਉਣੀ ਛੱਟੀਐ ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਥੋਠ ਨਾ ਆਵੇ ਖਟੀਏ ਖਾਚੇ ਤੇ ਖਸਾਮਦੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਵਟੀਏ ਹੋ ਵੇ ਸਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਸੁਖ ਛੱਟੀਏ ਸੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟੀਐ

महादेव जी की राम कली घर पै लाए को अंकार सतगुरु साध आनी ले कागद काटी ले गुड़ी काटमा दे परमिया ले पंचना सब बात बद बची सतोई राखी ले मन राम नमा बेदी ले जैसे खाना कला चत मानी ले रह आनी ले कम पराई ले उद कर राज कुरा प्रंति की है दूर विचार कर दिया चीत सुखा कर राखी ले मंदा एक द्वार दाह जाके जाऊ गौ चरावन साड़ी ले पांच कोस पर गौ चराव चीत सोचरा राखी ले का नाम दो सुनो तलोचन बालक परन पौड़ी ले अंतरवार काज वृद्धि चीज बालक रखी ले वेद प्राण शास्त्र अनाथ गीत गावत न गावो घोर खंड मल अलंकार में अनहर बेन बजावो गो बेन बजावो गो।

हम नहीं होते तुम नहीं होते कम कहाँ थी आया राम कोई न कही के ना जैसे तरब बांगो सेरा राव चंद न होता सूर न होता पानी में मलाया साथ न होता विद न होता कर्म कहाँ थी आया खेचर पूजा तुलसी मला गुरु शादी पाया नाम प्राण में परम साथ है सब गुरु लिखाया राम कली कर दूजा बान रसी तब करे उड़ते तुम्हारे अगन दहे काया कल्प कीजिए सुमेध जा कीजिए सोना गर्भ धान दीजिए राम नाम सतो न पूजे छोड़ छोड़ रे पगंडी मन का बटे नकी जी अर का नाम नत न चली जे राव गंगा चौकदार जाइए कुंभ चौकदार नहीं गोमती सहस गौ दान कीजिए कोड़ जो तीर्थ कर तन जो हवाले घरे राम नाम सब तो न पूजे आस दान लाज दान से या नारी भूम दान ऐसो दान नित नित कीजिए आत्म जो नवाल कीजिए आप बराबर कंच दीजिए राम नाम सब तो न पूजे मने न कीजिए रोष जमने दीजिए दोष निर्मल निर्वाण पद छीन लीजिए जस रस राय नंद राजा मेरा राम चंद प्राण मय नामा सत रस मत बीजे राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पढ़िए गुणी नाम सा सुनिए अनुप भवन दास लोहा कंच रहे नोए कैसे जो कार से ना पर देव सांसे गण झूठे काम करो माया मद मास्टर इन पंचों में लूटे रहाओ हम बड कब कुलि नाम पंडित हम योगी सन्यासी ज्ञानी गुण सूर हम दाते बद कब नासी गौरवदास सभी ने समझे पूर्व भय जैसे बोरे मोहे नाम नारायण मोहे धार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे ही राम कली बाणी बेणी जीव की एक ओंकार सद प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसे एक ठाई बेणी समझ प्रागमन मजन करे तथाई संतो तान रंजन राम है गुरुकम जी ने बेला कोई तहन रंजन मैया हुई राम विदेव स्थानी ज्ञान साणी दवाज सब तो नाद वाणी चाह चांद न सूरज पौन पाणी साखी जागी गुरमुख जानी उपजे ग्यान मधुर मत श्री जी अमृत रस गगन अंतर बीजे इस कला जो जाने प्यो पेटे तास परम गुरुदेव दस वार अगम पर परम गुरु की घाटी ऊपर हठ हठ पर लाल पित था जात है सुख न सोए तीन त्रोक समाध बलोए बीज मंद लय हृदय रहे मन में उल्ट सुन में गए जागत रहे अलिया पाखे पांचों की बस कर राखे गुरु की साखी राखे जीत मंत्रे कृष्ण प्रीत कर पल साखा विचारी अपना जन्म जुए मूल पाशन फिर चलाए सुधा जर जरे सु निजर जर जगनाथ सुट करे मुख दीवा ज्योत पलू अंत मूल विचकार सर्व कर लिया फिर मन मन रत्न में गोहे मस्तक पर

भवन मेला हुई जब लग सा मन उसे तब तक भी न हुई नानक से दे छुट्टी है माता सोचा सोई मारू मेला पहला जोगी जो उतना निर्मल ताकि मैं अनराती भी तुम ना सदा सा संगे जन मन गत भी थी बुझाई तेरा कहाँ नाम कैसे जाती या तो भीतर मैल भराए पूछो बात नती राव ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गण पूजे पाती को नाम एक नारायण तेर पवन एका ज्योति जेहवा डंडी यह कट शाबा तोलो नाम जाची एको हाट साहु सबना सिर बंजारे एक पाती दो सिरे सदगुरु नवेड़े सोभु जिसे एक लिवलागी जीव रहे ने प्रांति शब्द बसाए परम जगाए सदा सेव दें राति ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका गम गुरु पनवासी गौर बचनी बार करे को नानक पया उदासी राग मारू मेला पहला कर पंज वाए।

जय भेजी तय जावा सब नगरी में एको राजा सवित है सावा बाबा देव स सच गावा जाति सह जी सह समावा रहा बुरा भला किस आप से जानी आई सकल विकार आयो फरमाया कसम का बाबा ते संसार आईंदी तात सगल कही अत इंद्री किस्त हुई आपे खेल कर सब करता साबू जे कोई गुरप्रसादी एक लागी दो दिवनासी जो दस पाना सौ सात कर मानिया काटी जम की फांसी पंत नानक लिखा मांगे कबना जा चुका मन भवाना था था धर्म राय जपत है पे सचे की शरणा मारू महला तीजा आपन जाना ना थिए नी करवासा होए सच खजाना बख्शे आया पे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो ताज बेकार गुर के शब्द ते आए तू सच लगी पे आ रहा ऐथे नाम भुलिया फिर हथ खदाम ना पाई जोनी सप वाइन बेटा माए समाए बड़भागी गुर पाया पू लिखिया माए अंदर सची भात कर सचा ले मलाई आपे सिर साहब साजन आपे नजर करे नानक ना बड़ियाँ जय भावे तै दे मारू महला तीजा पिछले गुनाह बख्शाए दियो अब तू मार्ग पाए हर की जाने लाग रहा बिचों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा चानी लाग रहा एक मन एक है पाए रहा ना मैं जात ना पात है ना मैं थे हो ना था हो शब्द भेद तो कटिया को नाम दिया समझाए मन लालच करता फिर लालच लागा जाए धंधे कूड़ गया पिया जम पर झोटा खाए नानक साहब कश्या पिया पै दूजा ना ही कोई पथ खजाना बख्शियन गुरमुखा सुख हो मारू महला तीजा सरत सचरत से टोलो थे वेले संसार जनमलिया मखुजला जप नाम रार बाबा साचा साहब दे समाल सतगुरु अपना देख ले हो सतगुरु अपना पुछ देख ले हो बखर पाल रहा हो एक सच्चा सब सेव दी तुर भग मिलावा हुए गुरु मिले से न बिछड़े पावे सरसो एक भक्ति सा न जानी मन पर बुलाए उन्हें बिचा वर्ता करना किसू ना जाए जिस नाल जोर न चलई खल के चरदास नानक गुरमुख नाम मन वसी ता सुन करी सावास मारू महला तीजा मारू ते शीतल करे मनुरो कंचन होए सो साचा सनाई ते जेवड़ा वर न कोई मेरे मन अंधन त्याय हर नाम सतगुरु के वचन रहा तू अंधन गुण गाव रहा गुरमुखे को जानिए जा सतगुरु देव जाए जो सतगुरु सो सतगुरु सलाइए जिदू सो जी।

सुंदर गण गंधर्व जप्यो रिख बपरियर गाय शंकर ब्रह्म देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जना मन पीना ते गुणुक पार पया कोट कोट तीस त्याय वर जप त्यां पाया वेद प्राण सुम तर जपया मुख पण तर गाया नाम विशाल जना मन बसया ते गुणुक पार पया अनंत तरंगी नाम जन जपया मैं गण तन कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जवर ब्रह्म मन भाया गुरु तार कृपा नाम द्रव जन नानक नाम लिया मारू मल चौथा कर तीजा एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निधान लै गुरु तार पद पाई अल पद नाल चलदा हर अंत लै छाए जिथे अवगत कलियां पीड़ियां हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरु मैं हर नाम लड़ाए मेरा मात पिता सुबंध पर मैं हर बिन अवर नाम आए रहाओ मैं हर ब्रिया नाम का कोई अण मिला जमाए ते स्वागे मैं जोग मेरा पीतू दे मिलाए सतगुर पुरख दया बरावर मेले ते न पाए जिन हर हर नाम ना चेते उसे भागवीन मर जाए फिर वे जो भाई मर जमे आवे जाए जमदर पदे मारी हर दर जमले सजाए तू प्रभा सुनागति मुको मेलवा राय हर धार कृपा जगदेव ना गुर सतगुर कृष्णा जी।

प्रभाव मैं अंतर प्रेम पर राम का क्यों सज्जन मिले मिला आसमान प्यारे मित्रा मैं हर हर नाम तारा आस गुर पूरे नाम दड़ाया तीर्थ कर स्वास राव हर हर आप मलाई गुर मैं दसिया तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन बेखो मन रजास हर गुर बिचिया प्रख्यार मेले गुर सुहास प्रसागत भगत भंडार हर पूरे सुगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुर मखार प्रगास मानव पाग बिहुणिया

नेत्र रखे भराए श्री सुठावना कब मिलई महा दुतरमाए सूर मुक्ता सची मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी लपाए सुभाव जस संत लेप सदा निर्मला जिस कर्म खुलिया तो लह पड़दा जिन गुर पै मनिया सुपाए गुर मंत्र अवख नाम दे ना जन नानक संग जो न पाए रे नर इन वेद पार भराए त्याए हर जी ओ मृतक त्याग दूजा पावरा।

अनुभव अच रज रूपा पेख्या मेरा मन छोड़ नगा तू जाया था। मानक पायो रे पायो वर पूरा पाया था, मोल मोला पाया जाय कर कृपा गुरु दवाया था। रहा उद्देश्यों को चुर पारो अमर साधु का दुखाया था। न शब्दा सुंदवार बजे होते अमृत नाम जो आया था। टोट नाही मंत्र सुना बूझी घुट भंडार समाया था। चन चन चन गुर सेवे घड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। को नानक परम गुर खोया हाँ हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिसे सा

खेती लाए मनुआ पलो समा समाव रहा कोई खेड़ा पत मन का सदगुसा नहीं जाए। कर्म जिसको तुरो लिखया सोई कार कमाए भाव लागा गुण सो घर पाई थाए खेत मेरे जमया नखुट ना काबू जाए पाया मूल पदार्थ छूट न कर तू जाई को नानक सुख पाया तिर त्रय खाई मारू महला पंजवा फूटो आंडा भरम का मने भैो परगास काटी मेरी भगत गुरकीनी बंद खलास आवन जाना रहो तपत कड़ाह बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहो। जब दे साधु संग पै तो छुट गए ने कहा जिस की छुट्टी रहो तो कहाँ करे कोटवा चूका पारा कर्म का हुई ने कर्मा सक चंडे चढ़े गुकी ने धारमा सच थान सच बैठका सच सुभाव बनाया सच पूंजी सच बखरो नान कर पाया मारू महला पंजवा वेद पकारे मुक्ते पंडित कमावन का माठा मुनि हो बैठा कांति हिरदे कल्पन गाठा होए उदासी ग्रह उतार चलियो छुटके नाई नाठा जी कह पात कहा जी की कह पै बात कहा आ मुक्त मुख प्रा मेले ऐसो कहा लार तपसी करके देही शादी मनवा दस धाना ब्रह्मचार ब्रह्मचार की नहदे पै गुमाना सन्यासी हो कहती ब्रह्मी उसने क्रोध भगाना घुंघर बाद पै रामदास रोतियन के पावा वर्त नेम कर्म खट की ने बार भेख दिखावा गीत नाद मुख राग ला पे माने हर हर गावा हर सोगलो मोरहत है निर्मल हर के संता तेन की तूड़ पाए मन।

मद माता कोड़ी बदे जनक बाता अपना छोट पराय रहता माया मद मन तन संग जाता तृष्ण बुझे का तकल उला उनी आस मिथ्या सा बोला आप तकेला जात केला हाम तुम संग झूठे सा बोला पाए टगोरी आप लायो नान कितना जाय मटायो पस पंखी भूतर बेता बहु विद जो निवेद नेता जय जानो तरण पावे थान भी नो ठुट फिरता अवे मन तन बस नवा सुतारा मे मुटो बेचारा अनक दो कर बहु सुताई ताकि क्यों कह न जाई प्रभ विष्णु नरक मैं पाया तै मात न बंध न मीत न जाया जिसको होर कृपाल स्वामी सूजन नान पर ग्रामी ਭ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮਤ ਪ੍ਰਸਾਨੀ ਆਦਿ ਨਾ ਜਗਤ ਪਤ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਦੁਰਦਾਸ ਬਧਾਰਨ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤੇਸੀ ਨਿਤਾਰ ਅਨੰਦ ਗੁਰ ਦੇ ਕਾਟਣ ਹਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹੋ ਧਨ ਸਤਾਰਾ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਕੰਤਾ ਕਰਤਾ ਹਰਿਆ

संत साजन भय सरसे उरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे।

जिस समय सुख होए सगले दुख जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी 400 सेवा करोगे अरदास?

अमर दृश्य शुभ करा हरा अग पाप सकल मल काम क्रोधर लोभ मोह वस करै सुबह बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम का